नमस्कार। तो आप सुन रहे हैं रेडियो त्वरणा, अपनी आवाज़ और अपना अपने लोग। तो मैं इसी मौके पे आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ, जो शेर है मिर्ज़ा गालिब और परवीन शाकिर जी का। जो मिर्ज़ा गालिब जी कहते हैं कि एक जनाजे के खातिर सारा जहां निकला, बस वो नहीं निकला जिसके खातिर जनाजा निकला। तो परवीन शाकिर जी कहती है कि ए सनम, मैं कैसे आती तेरे जनाजे के पीछे, मेरा अपना ही जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। तो मेरा पसंदीदा गाना है दिल मेरा तोड़ दिया उसने।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ सौ लिए हैं.

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
2: आपली पसंत आमची आवड, मनस्वी संगीत, शेती, महिला आरोग्य, विशेष कार्यक्रमांचा नजराणा, आपला रेडिओ तेरणा। ऐकत रहा, आनंदी रहा। रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। क्रिस्टल क्लिअर आवाजासाठी डाउनलोड करा आमचा ऍप प्ले स्टोर वरून। टाइप करा रेडिओ तेरणा 90.4। रेडिओ तेरणा आता रेडिओ गार्डन वरही उपलब्ध, तसेच radio.coeusmanabad.ac.in वेबसाइट टाकूनही आपण रेडिओ तेरणा ऐकू शकता। ऐकत रहा रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं, आपला आवाज। ऐकत रहा, आनंदी रहा।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

उठो नहीं, लेटे रहो, जो भी हुआ, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो।

देखिए माँ, मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। अरे आप, तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे, और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर।

मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं।

0: I'm sure इतने बड़े घर में तुम अकेले नहीं रहते होगे।
1: अकेला ही रहता हूं क्योंकि अकेला हूं
0: मैं भी।